0: the past 15 years. So everybody is saying this kind of politics we never witness in Bengal or West Bengal. They should be dumped in dustbin.
1: यार पार्टी ममता बनर्जी ने खड़ी की, अपने खून पसीने से की, अपने संघर्ष से की, जेल गई, उनका माथा भंगचूर हुआ, उनकी हड्डियां टूटी, मार खाया और उन्होंने खड़ा किया है। और घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है, ध्यान रखिए। जो लोग ये एक गुब्बारा फुलाए हुए हैं जिसमें हवा भरा हुआ है, वो उसमें वो हवा है नहीं, वो पंक्चर हो जाएगा, कल साफ पता लग जाएगा, आप कल देखिए।
2: And amid buzz over a divided opposition INDIA bloc, the opposition alliance is set to hold a crucial meeting in the national capital on the 8th of June. According to Congress, 23 political parties have confirmed their participation, while TMC has affirmed that INDIA bloc is united and meeting is done with a common purpose and a clear intent. Mamata Banerjee, who is battling the biggest existential crisis of her political career, has arrived in the national capital to attend the meeting along with her nephew Abhishek Banerjee. Ahead of this bloc meeting, Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal met Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. Even though AAP has distanced itself from the coalition and taken a sharp dig at the Congress party and said that BJP and Congress are hand in gloves to weaken the smaller parties. Another bloc party, which is DMK, has claimed that it will boycott the meeting as the party is not a part of the alliance anymore after Congress betrayal in Tamil Nadu. Congress leader Rashid Alvi has stated that the smaller parties should merge with the Congress as BJP will not allow them to survive. Reactions.
3: More and I, one of us will go.
4: Okay, so National Conference is going to represent.
3: Obviously, we're part of that. We'll be there.
5: कहूँगा प्रतीक्षा करिए 8 तारीख की, वहाँ देखिएगा कौन आता है कौन नहीं आता है, उसके बाद हम बात करेंगे। खुद तो बिहार में देख लो, आज कुशवाहा साहब कितना नाराज है, वो आपके गठबंधन के सदस्य ना, उनका बेटे को MLC बनाया और टिकट नहीं दिया है भी, मंत्री कैसे रहेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में देख लो, निषाद जी कल बोल गए हैं संजय जी कि यहाँ तो तानाशाही, तो जरा अपने दामन में देखो तुम्हारे मंत्री क्या बोल रहे हैं।
3: कांग्रेस 100 MP से ज्यादा की पार्टी है और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टी जितनी भी हैं उनमें से ज़्यादातर पार्टीज़ को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। आज देश का यही तकाजा है, छोटी छोटी पार्टीज़ देश के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, BJP नहीं करने देगी। आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी, उनके पास एजेंसीज़ भी हैं, उनके पास काला धन भी है। इसलिए इन पार्टीज़ को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा।
6: सर्टेनली आफ्टर द मीटिंग वी विल टेल द एजेंडा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, दे वे इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बुलडोजिंग एंटी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स एंड द इशू ऑफ स्टूडेंट्स, all much lot many issues are discussing in, has to discuss in this meeting. This is an India alliance meeting, certainly in all India alliance meeting is important, this is also important meeting.
7: After a long time a formal meeting of India bloc is taking place. I do not know who are all the leaders going to be present there, which are the parties going to attend the meeting. I do not know all the informations. Even agenda is not very clear. Every party has certain issues to raise. DMK is not attending that meeting. Left parties openly have said there are issues to be raised. This cannot be taken as cracks.
8: देखिए कांग्रेस जो भी अलायंस करता है उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है, उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है। कल भी हमने देखा कि किस तरह युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए, देश के युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए। जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं हम लोग देश के युवाओं के साथ हैं। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस बीजेपी को

0: Welcome back, and after one of the most historic IPL campaigns, the one name on everybody's mind is teen sensation Vaibhav Suryavanshi and his rise to the pinnacle of T20 cricket. Now, with an India call-up under his belt, his rise is nothing short of historic. Here's a special conversation with the boy wonder himself. Listen in.
1: तो वैभव आप मैनिफेस्टेशन किए स्टार्ट जब किए बहुत सारे प्लान बनाते हो वैभव हमेशा ड्रीम देखता है फिर एक एक चीज़ अचीव करता है फिर खुश होता है वैभव अगला क्या सोच रहे हैं
2: मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जब अब क्रिकेट खेलूं अगले 20 साल तक जितने दिन भी खेलूं जब तक भगवान मुझे मौका दे खेलने का कंट्री के लिए किसी के लिए किसी फ्रेंचाइजी के लिए किसी भी टीम के लिए इस तरीके से खेलूँ कि जब लोग देखे मैचेस के बारे में सोचे तो लोग ऐसा बोले कि एक प्लेयर जो जब भी खेलता था वो अकेले ही मैच ख़त्म कर देता था वो डोमिनेंस दिखना चाहिए वो क्योंकि उसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खेला और खेल ख़त्म ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है 10 साल 20 साल तक डोमिनेट करना है और अच्छा क्रिकेट खेलना है और

0: क्योंकि इन्जॉय करने के लिए मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट, तो मैं लाइफ टाइम इन्जॉय करूँ, अच्छे से खेलूँ।
1: आज बहुत सारे लोगों को मिले, साथी विराट भैया को मिले, जय भाई को मिले, तो इन सब लोगों को मिलके फीलिंग क्या आई है?
0: सर मैं आपको सच बताऊँ, जब विराट भैया ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा तो मैं पहले आरसीबी का भी फ़ैन था। एक्चुअली मैं विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फ़ैन था, विराट भैया का
1: मैंने
0: बहुत ही
1: देखा आपने
0: बड़ा।
1: कैप पे भी ऑटोग्राफ लिया था,
0: हाँ
1: वो कैप आपने बहुत बार पहनी भी है।
0: हाँ मैंने जब ऑरेंज कैप नहीं रहता था मेरे पास तो मैं वही कैप पहनता था। जब उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ डाला, मुझे जब वो मेरे से जब बात कर रहे थे तो मुझे मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा था जैसे ड्रीम सा है। जिस तरीके से उन्होंने बात किया, लगा ही नहीं कि वो एक्चुअली में विराट कोहली एक बड़े भाई की तरह। उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया, जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए फ्यूचर में। जय सर वो भी मिलते हैं जब भी मेरे से, तो बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि फोकस्ड रहना है, अभी बहुत आगे जाना है, गेम पे ध्यान देना है, एकदम पाँव ज़मीन पे रख के बस अपने काम पे फोकस करना है। काफ़ी सर
1: आपका जो
0: बहुत
1: होम
0: सर
1: स्टेट है बिहार, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप उनको, क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की थी, जैसे अभी आपने बोला बिहार पहले आता है, तो वैसे भी हायरार्की में जब शुरुआत तो वहीं से की
0: सर
1: थी।
0: मैं आपको बता दूं, उनके लिए बोल मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। आप सोशल मीडिया खोलोगे और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब अनरियल है वो। मतलब मैंने कुछ गलत भी करा, मैं कुछ गलत खेला या मैंने रन नहीं बनाए, फिर भी जिस तरीके से वो लोग मतलब बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे जो मेरे बारे में लिखते हैं पॉजिटिव, और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब जितना बोलूँ उतना कम है। मतलब बिहार जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ, जब मैं ऐसा निकलता हूँ पटना से घर के लिए, तो मतलब वो अलग ही
1: वो
0: फील
1: दिखता
0: होता
1: है,
0: है।
1: वो
0: वो
1: दिखता है।
0: मतलब लगता है ऐसे कि घर में आ गया, अब सेफ हूँ मैं, अब कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। और मतलब
1: मेरे अपने
0: बिहार में, हाँ बिहार में रहना मतलब मैं अब थोड़ा मुश्किल हो गया बाहर निकलना, नहीं तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि हर समय मैं घूमते ही रहूँ, पैदल निकलूँ रात में, शाम में, दिन में, जब भी घूमूँ, क्योंकि वहाँ के लोग एक अलग अटैचमेंट है हर किसी से। जिसको आप नहीं भी जानोगे ना, उससे भी आप बात करोगे तो लगेगा कि बहुत टाइम से दोस्ती है, कुछ पूछोगे उनसे तो वहाँ ऐसे नहीं बोलते हैं। मतलब कि मतलब वहाँ हर चीज़, अगर आप कुछ पूछ रहे हो अनजान आदमी से और वो कुछ बता रहा है आपको, तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बताते हैं वो लोग मतलब। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है और वहाँ के लोगों की बात है, वो अनरियल। मैंने आपको बोला कि वो कुछ देखते ही नहीं है, मतलब कि जिस तरीके से वो लोग प्यार करते हैं और सपोर्ट
1: मेरे
0: करते हैं।
1: पासपोर्ट पे अभी भी लिखा है कि मेरी पैदाइश बिहार की, बॉर्न प्लेस बिहार लिखा है, ठीक है? तो मैं अभी कभी मतलब उसके बाद अभी गया नहीं, तो मैं तेरी बातें सुन के लगता मुझे टूर, अगर मेरे को कहीं जाना चाहिए छुट्टियां मनाने तो मुझे बिहार में जाना चाहिए।
0: सर बिल्कुल
1: तो
0: सर,
1: आप होस्ट
0: आप
1: करोगे क्या?
0: मैं होस्ट के, आप जो बोले वो सब हो जाएगा।
1: वैभव मैं दिल से बोलता था तुमको, क्योंकि जैसे तुम इमोशनल हो मैं भी बहुत इमोशनल हूँ कि आपने जो क्रिकेट हमें दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। इंडिया जर्सी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसके बारे में दो शब्द, उस फीलिंग के बारे में कि आपको लग, बहुत लोगों ने बोला और आप अभी इंडिया ए के टूर पे जा रहे हैं, बस आखिरी बात।
0: बस सर सबका तो सपना है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करे, बट मेरा बस यही फोकस है कि जो भी जहाँ भी जिस स्टेज पे भी मुझे मौका मिले, मैं अपना परफॉर्मेंस करते रहूँ, अपना काम करते रहूँ, बाकी सब कुछ मिलते रहेगा।
2: Well, that special conversation and much more is up on our website, edtv.com. That is a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: TMC is facing a backlash on the streets of Kolkata and fighting for its survival in West Bengal Assembly and the Parliament. Ritaprita Banerjee has made claims that he has the support of over 60 MLAs that have switched from the TMC, and speculations are rife about MPs appearing before the Speaker to lead the TMC. Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee are in a huddle to save the party. They are in Delhi and set to attend the meeting of the INDIA block and reach out to the MPs. TMC has about 28 members in Lok Sabha, 13 members in Rajya Sabha. They won 80 seats in the recently concluded assembly elections. But now, about 60 MLAs have deserted the party. In the midst of all of this, the opposition alliance is set to hold a crucial meeting in the national capital on the 8th of June. Well, according to the Congress Party, 23 political parties have confirmed their participation. TMC has affirmed that INDIA bloc is united and meeting with a common purpose and a clear intent. Ahead of this meeting, Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal met Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. Even though AAP has distanced itself from the coalition, taken a sharp dig at the Congress Party and said that BJP and Congress are hand in gloves to weaken the smaller parties. Another India bloc party, DMK, has claimed that it will boycott the meeting as the party is not part of the alliance after the Congress betrayal in Tamil Nadu. Congress leader Rashid Alvi has stated that the smaller parties should merge with the Congress party as BJP will not allow them to survive.
1: Certainly after the meeting we will tell the agenda. We are discussing about the current political situation in the country. The way in which the government of India is bulldozing anti-democratic attitudes and the issue of students. Not many issues are discussing, has to discuss in this meeting. This is an India Alliance meeting. Certainly in all India Alliance meeting is important. This is also an important meeting.
2: After a long time, a formal meeting of India bloc is taking place. I do not know who are all the leaders going to be present there, which are the parties going to attend the meeting. I do not know all the informations. Even agenda is not very clear. Every party has certain issues to raise. DMK is not attending that meeting. Left parties openly have said there are issues to be raised. This cannot be taken as cracks.
3: देखिए कांग्रेस जो भी अलायंस करता है उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है. उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है. कल भी हमने देखा कि किस तरह युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए, देश के युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए. जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं हम लोग देश के युवाओं के साथ हैं. आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से. हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन अलायंस विद कांग्रेस.
4: विषय है ये दुनिया का सामने एक लाफिंग स्टॉक बन गया. आज तक कभी सुना इंडिया ब्लॉक की सारे आला नेता एक जगह बैठकर प्रेस को एड्रेस किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा? पश्चिम बंगाल में खुलेआम ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो कौन सा इंडिया ब्लॉक, कहां का इंडिया ब्लॉक? टू वैंक्विश्ड कैनॉट मेक एनी विक्टर. आने वाला 20 साल में भारत की जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको हटाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है. लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक सशक्त विपक्ष का जरूरत है. दुर्भाग्य है कि भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र की जननी, उसमें कोई विपक्ष नहीं मिल रहा है.
5: कांग्रेस 100 एमपी से ज्यादा की पार्टी है और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टी जितनी भी हैं उनमें से ज्यादातर पार्टीज को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए. आज देश का यही तकाजा है. छोटी छोटी पार्टीज देश के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं करने देगी. आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी. उनके पास एजेंसीज भी हैं, उनके पास काला धन भी है. इसलिए इन पार्टीज

0: there are issues to be raised. This cannot be taken as cracks.
1: देखिए कांग्रेस जो भी अलायंस करता है उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है, उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है। कल भी हमने देखा कि किस तरह युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए, देश के युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए। जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं हम लोग देश के युवाओं के साथ हैं। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन अलायंस विद कांग्रेस।
2: विषय है ये दुनिया का सामने एक लाफिंग स्टॉक बन गया। आज तक कभी सुना जी इंडिया ब्लॉक की सारे आला नेता एक जगह बैठकर प्रेस को एड्रेस किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। पश्चिम बंगाल में खुलेआम ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो कौन सा इंडिया ब्लॉक, कहां का इंडिया ब्लॉक? टू वैंक्विश्ड कैनॉट मेक एनी विक्टर। आने वाला 20 साल में भारत की जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको हटाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक सशक्त विपक्ष का जरूरत है। दुर्भाग्य है कि भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र की जननी, उसमें कोई विपक्ष नहीं मिल रहा है।
3: कांग्रेस 100 एमपी से ज्यादा की पार्टी है और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टी जितनी भी हैं उनमें से ज्यादातर पार्टीज को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। आज देश का यही तकाजा है, छोटी छोटी पार्टीज देश के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं करने देगी। आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी। उनके पास एजेंसीज भी हैं, उनके पास काला धन भी है, इसलिए इन पार्टीज को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा।
4: And TMC is indeed fighting for its political survival after the debacle in the recently concluded polls. There are cracks in TMC MP ranks. Parliament after assembly, that's the big question. There are reports of growing disquiet among the TMC member of parliament. Several MPs are set to be in touch with the rebel camp. MPs are upset over party's internal power equations. There is also this discontent which is linked to Abhishek Banerjee's rise within the TMC. Many call it an instance of nepotism. The old guard has said to be pushing for a bigger role, but they have never quite gotten a share of what they were demanding. The Delhi unit emerges as a new power center as Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee try to negotiate with this new power center. The rebel camp claims to have the support beyond the assembly. They're saying not just 60 MLAs. We don't stop there. We're also talking about the member of parliament. There are fears of revolt which is spreading from Kolkata to Delhi. And what will happen in the next few days is a wait and watch.

0: हो नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली ये सारे कांग्रेस से ही टूटे हुए हैं, उनसे पहले से ही खफा थे, इसलिए इन्होंने अपनी पार्टीज बनाई, और उसको जबरदस्ती अगर आप जोड़ोगे तो वो ज्यादा दिन तक चलती नहीं है.
1: Well, quick break, back in a moment with the latest for you.

0: अब मेरे हिसाब से उनको चिंतन मनन मंथन करना चाहिए कि वर्तमान युग परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स का है। जो अच्छा परफॉर्म करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। जिसको नरेंद्र मोदी जी ने नाम दिया है पॉजिटिव पॉलिटिक्स, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, और जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करेंगे वो पीछे जाएंगे। अब ये तो मुझे लगता है अशोक गहलोत जी नेगेटिव पॉलिटिक्स की ओर बढ़ गए हैं।
1: गहलोत साहब सुर्खियों में रहने के लिए कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। पता नहीं उनको क्या है, एक तो वो सचिन के खिलाफ में लगातार बयानबाजी करते हैं, कभी तो दोस्ती साबित करने की कोशिश करते हैं, साथ में रह के फोटो खिंचवाते हैं और मीडिया में ये कहते हैं कि देख लो हम एक हैं, हम साथ में खड़े हैं, देखो फिर मत कहना कि हम अलग अलग हैं। तो साथ रहने का वो सबूत भी देते हैं फोटो खिंचवा कर, मन से साथ नहीं है। अब ये वैसे तो यूँ समझो तो उनके अंदरूनी मामला है, ये आपस में अंदूरा कुश्ती है, उनकी कुश्ती लड़ते रहते हैं। ये सचिन जी को तय करना है कि किस दिशा में उनको रहना है।
2: जब जब भी माननीय सचिन पायलट साहब का नाम केंद्र में किसी बड़े पद पर, प्रतिष्ठित पद पर नाम आता है और संभावना बनती है, तो होटलों में बंद होने वाली कहानी पुनः दोहराते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उनके आरोपित करते हैं कि उन्होंने बीजेपी वालों के साथ मिलकर के पार्टी तोड़ने का प्रयास किया। मेरा उनसे नम्रता से निवेदन है, जिस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं, अगर उसमें लेस मात्र भी सत्यता है तो उनके मुख्यमंत्री के काल के दौरान ये सब घटनाक्रम हुआ, और उनके स्वयं के अनुसार अगर जैसा कोई लेन देन का आरोप वो लगा रहे हैं वैसा लेन देन का अगर कोई घटनाक्रम हुआ है तो उन्होंने क्यों ना आज दिन तक मुकदमा दर्ज कराया।
3: अशोक गहलोत जी एक बड़े नेता है और अपनी बात कहने का अधिकार है। जो वो कह रहे हैं वो अतीत की बात है, पीछे क्या हुआ वो इतिहास है, और राजनीति में इतिहास पे चर्चा हो सकती है लेकिन उससे राजस्थान के विकास में कोई फ़ायदा नहीं है। हम चाहते हैं और जनता राजस्थान की चाहती है, आने वाले समय में 2020 की बात नहीं सुनना चाहती है, वो 2047 की विकसित राजस्थान की बात सुनना चाहती है।
4: Well, on that note, we're slipping into a very quick break, but as always, the news continues right here on NDTV 24/7. Do stay tuned.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: इकोनॉमी, बिजनेस, वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, नॉइज फिल्टर्ड, नंबर्स डिकोडेड, इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू। फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ, वी कनेक्ट द डॉट्स। योर डेली एज, योर ग्लोबल एडवांटेज। इंडिया बिजनेस रिपोर्ट विद मी गौरी द्विवेदी, वीक नाइट्स ऑन NDTV प्रॉफिट।
6: Higher rate, check the audio. Higher rate, check the audio.
7: Let's do it. Let's do it. Let's start.
8: Breaking story, we're jumping straight into it.
9: We've got a picture of the letter.
10: What is in your letter?
9: You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
11: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
12: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
13: For a country that has fought so many wars in the mountains and

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आकर मसाला।
3: नवनिधि शर्मा द फादर ऑफ त्रिशा जॉइंस मी वन ऑन वन फॉर द फर्स्ट टाइम।
4: शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है। भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल।
5: अ ब्रदर मेजर हर्षित स्पीक्स आउट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन नेशनल टेलीविजन।
6: वी हैव बीन फाइटिंग नॉनस्टॉप, we are not stopping until the justice is served.
7: Missing, where is your son? Let me ask you that pointed question.
8: He is ready to face all the questions, but he has to exhaust his legal remedies.
9: Breaking news coming in, Samarth Singh has finally surrendered. These are fresh visuals coming on your
10: screen. Number
9: first on NDTV. NDTV is the only network in the country that is relentlessly chasing this case.
5: Joining us live now for the first time is Rigendra Singh, senior advocate, appearing for Samarth Singh.
11: The girl has gone because of the pressure created by her own.

0: जहां जहां भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अलायंस टूटता नजर आता है, चाहे वेस्ट बंगाल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, और कांग्रेस जब है जहां पर है वहां कोई अलायंस हो नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली ये सारे कांग्रेस से ही टूटे हुए हैं, उनसे पहले से ही खफा थे, इसलिए इन्होंने अपनी पार्टीज बनाई, और उसको जबरदस्ती अगर आप जोड़ोगे तो वो ज्यादा दिन तक चलती नहीं है।
1: कि इंडिया गठबंधन नाम की अब कोई चीज भी है नहीं, कांग्रेस से डीएमके ने दरकिनार कर लिया, जेएमएम ने भी आज कुछ कहा है, कम्युनिस्टों ने भी कुछ कहा है, तो धीरे धीरे इंडी गठबंधन जो है वो टूटता जा रहा है, समाप्ति की ओर है, सब लोग कांग्रेस से अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ टीएमसी भी उस समय आई जब उसका सफाया हो गया पश्चिम बंगाल में, तो अब मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग और पता नहीं है, देश की राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
2: दूर दूर तक इंडी गठबंधन का वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि इनका गठबंधन स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, केवल वह भारतवर्ष के या केंद्र में सत्ता आने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका काम सेवा करना नहीं, जनता का सेवा करना नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का जनता का सेवा करना, लेकिन उनका भावना सेवा करना नहीं है, केवल किस प्रकार से हम साम दंड भेद ये व्यवहार करके हम सत्ता में, यही उनका एकमात्र, अभी यहां ममता बनर्जी हार चुकी है और आप किस प्रकार से इंडी गठबंधन में माने घुसा जाए, इसको मजबूत किया जाए, क्योंकि मैं सदन में रहता हूं, इंडी गठबंधन का चरित्र सदन के अंदर में कुछ और होता है, सदन के बाहर में कुछ और होता है, इंडी गठबंधन माने संगठित नहीं था, नहीं है, भविष्य में भी नहीं रहेगा।
3: Right, so India bloc meeting set to take place in a few hours from now in Delhi. Of course, there are visible cracks within the opposition just ahead of this meeting. Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge will be a part of this meet. Some of the parties have opted out, including the DMK as well as Aam Aadmi Party. TMC will be a part of the meeting despite visible cracks within the TMC as well just after the results in West Bengal. Of course, BJP slamming the opposition over differences within the allies, within the parties of the India alliance. Let's go straight across to Tejshree on this. Tejshree, of course, India bloc meeting is coming at a very decisive time when there are visible cracks within several parties in the India bloc. But tell us, what's going to be the agenda of this meet?
4: Well, absolutely. Here, in fact, we'll just straight away listen to what Mr. John Brittas is saying. Mr. John, today is the meeting. What would you like to say? What is the agenda of the meeting?
5: Yeah. What is the agenda
4: of the meeting? John Brittas having a first meeting over here, and then they will be going to attend the meet. These are the pictures, in fact, that we are giving you. Crucial pictures, in fact, emerging out just ahead of the meeting that is all going to take place at 12 afternoon today. Important questions, in fact, about what about the agenda of the meeting?
5: Aikoji.
4: What is the agenda? See, several leaders, in fact, coming. KC Venugopal is, in fact, welcoming all the leaders of the India bloc who are attending the meeting. You see, Mr. Nasir Hussain is also here. Sir, and in fact, we also did try to speak to several other leaders who are, in fact, attending the meeting. We also did speak to CPI General Secretary as well, who, in fact, stated that as of now, there is no clear agenda.
6: Targeting Rahul Ji.
5: I don't see any posters. You are telling that.
4: So what about the posters? So what about the message? There are several posters.
5: You are just understand that this meeting itself is... How much their BJP people are scared of this meeting?
4: So there are several posters that are questioning the leadership.
5: Who posted that? Only BJP.
4: Mr. Venugopal, statements from...
3: Right. Thank you, Tejshree, for getting that important voice of KC Venugopal. He says BJP is scared of this meeting that is going to happen. We will, of course, keep tracking this meeting with you, Tejshree. Thank you for getting those details. Let's shift our focus to some breaking up.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: नवनिधि शर्मा द फादर ऑफ त्विशा जॉइंस मी वन ऑन वन फॉर द फर्स्ट टाइम।
6: शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है। भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल।
7: अ ब्रदर मेजर हर्षित स्पीक्स आउट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन नेशनल टेलीविजन।
8: वी हैव बीन फाइटिंग नॉनस्टॉप, we are not stopping until the justice is served.
9: Missing, where is your son? Let me ask you that pointed question.
10: He is ready to face all the questions, but he has to exhaust his legal remedies.
11: Breaking news coming in, Samar Singh has finally surrendered. These are fresh visuals coming on your
12: screen. Number
11: first on NDTV.
13: Ye kya keh rahe ho, aap surrender karne aaye ho ya surrender nahi karne aaye
11: ho? NDTV is the only network in the country that is relentlessly chasing this case.
7: Joining us live now for the first time is Rigendra Singh, senior advocate, appearing for Samar Singh.
14: The girl has gone because of the pressure created by her own parents.
7: These are difficult circumstances, but the hard questions still need to be asked.

0: Mamata Banerjee herself has come to the capital for the first time since her defeat and is attending that meeting of the opposition India bloc. Let's just take a look at some of the statements that have been made ever since we've been, you know, tracking these developments. As we said, Sukendu Shekhar Roy, who has resigned as an MP of the Trinamool Congress, is in Bhupendra Yadav's residence. Union Minister Bhupendra Yadav, who was in charge of West Bengal. Suvendu Adhikari was also there just a short while ago. He left, and we did manage to get a statement from him where he said, "Sab badhiya ho raha hai." Just listen in.
1: So that was, in fact, Suvendu Adhikari, who in fact has just left from the residence of Bhupendra Yadav.
2: All time record hua polling mein. Aisa Hindustan mein aur kahin hua ki nahi hua, mujhe malum nahi. Iska kya karan thi? जनता इतना खपा क्यों हो गए? इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ. पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था. उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था. तो आम जो हमारे ये वर्कर्स है, उनका बात सोचिए, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया. बरसों से उन्होंने लड़ाई किया बाम मोर्चा के खिलाफ. वो लोग पीछे चले गए. दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गया. अभी तो सब निकल रहा है ना, टीवी पर दिखाई दे रहा है.
3: ये सिर्फ शुकेंदुदा का बात नहीं है. मैं शुकेंदुदा से बात नहीं हुआ मेरा, मगर टीवी में शुकेंदुदा का जो बयान है, मैं ये बयान देखा हूँ, सुना हूँ. शुकेंदुदा का जो उन्होंने बोले है, मैं मेजॉरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ. और खास करके जहाँ तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था, शुकेंदुदा जो बोले है वो एकदम सही है. पार्लियामेंट क्विज करने का जगह नहीं है. क्विज मास्टरी करने का अलग सा जगह है, स्टूडियो है. पार्लियामेंट का फ्लोर, पार्लियामेंट का हाउस के अंदर, हाउस के बाहर भी, वहाँ ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अभिषेक बंदोपाध्याय का जो संगठन लोग बोलते हैं, उस संगठन में बंगाली में आप जानते हैं संघ का मतलब क्या है, गठन का मतलब क्या है. उसमें संघ है मगर गठन नहीं है. और जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, पिछले 15 महीना 2024 का दिसंबर से 2026 का अप्रैल में मार्च का अंत तक शुकेंदुदा जो बोल रहे हैं, मैं भी वो चीज भुगत के आया हूँ.
4: ना ज्यादा विरोधी दल एक साथ आएंगे तो उसको तो एक एडवांटेज होगा ही, शक्ति बढ़ेगा. तृणमूल कांग्रेस पर बहुत ज्यादा हमला हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, तो दूसरे लोग साथ रहेंगे तो तृणमूल का शक्ति मिलेगा. जैसे अभिषेक बैनर्जी पर जब व्यक्तिगत हमला हुआ, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस के ओर से उसको निंदा किया. यही मोरल समर्थन, नैतिक समर्थन मिलता है. हाँ दिया,
5: क्या कहा
4: आने को बोला?
5: आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया?
4: नहीं, नहीं जाएंगे.
0: All right, Saugata Roy, they're saying that this is an attack on the Trinamool Congress, and this comes after this massive implosion within the Trinamool Congress in Delhi as well. Remember, till now it had been among the MLAs, but now in Delhi as well, MPs are now meeting and revolting against Mamata Banerjee. Senior Rajya Sabha MP Sukendu Shekhar Roy, somebody who's one of the longest serving MPs of the Trinamool Congress, has resigned from Parliament, and he has stated several reasons for resigning, including what he's alleged as corruption. Meanwhile, this visual on your screens right now is five other Trinamool Congress MPs who are also meeting with Sukendu. Sukendu was also at, as we saw, at Bhupendra Yadav's residence. He was, Mr. Bhupendra Yadav was the leader in charge of West Bengal, and Suvendu Adhikari, the chief minister of West Bengal, was also at that meeting. So a lot is brewing, as you can see, within the Trinamool Congress. At the same time, Mamata Banerjee is in Delhi and attending the meeting of the India bloc on what the future of the opposition is in the country. Well, let's go across to Sheshi and Tejshree joining us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: ओछी किस्म की बातें होती हैं। जो भी डिफरेंसेस, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: सर, कांग्रेस पार्टी लगातार सीबीएसई और नीट को लेकर के मोर्चा खोले हुए हो, चाहे
2: राहुल गांधी जी के लीडरशिप पर कोई सवाल नहीं है। नंबर एक, हम लोग ये जरूर कहेंगे कि 2029 के चुनाव में जाने से पहले हमको एक ऐसा चेहरा लेकर जनता में जाना होगा इंडिया ब्लॉक का, कि हमारा चेहरा है प्रधानमंत्री पद के लिए। ये उद्धव ठाकरे साहब की भूमिका हमेशा रही है और इस बार भी रहेगी।
3: So even as the India bloc leaders are meeting in Delhi, the BJP has slammed the opposition over differences that have emerged. Listen into some of the reactions.
4: There is no alliance as such. अभी हमने देख लिया, जहां जहां भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अलायंस टूटता नजर आता है, चाहे वेस्ट बंगाल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, और कांग्रेस जब है जहां पर है वहां कोई अलायंस हो नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली ये सारे कांग्रेस से ही टूटे हुए हैं, उनसे पहले से ही खफा थे, इसलिए इन्होंने अपनी पार्टीज बनाई, और उसको जबरदस्ती अगर आप जोड़ोगे तो वो ज्यादा दिन तक चलती नहीं है।
5: लगता है कि इंडिया गठबंधन नाम की अब कोई चीज भी है नहीं। कांग्रेस से डीएमके ने दरकिनार कर लिया, जेएमएम ने भी आज कुछ कहा है, कम्युनिस्टों ने भी कुछ कहा है, तो धीरे धीरे इंडी गठबंधन जो है वो टूटता जा रहा है, समाप्ति की ओर है। सब लोग कांग्रेस से अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ टीएमसी भी उस समय आई जब उसका सफाया हो गया पश्चिम बंगाल में, तो अब मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग और ना मीटिंग इसका कोई फर्क देश पर पड़ता नहीं है, देश की राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
6: दूर दूर तक इंडी गठबंधन का वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि इनका गठबंधन स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। केवल वह भारत वर्ष के या केंद्र में सत्ता आने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका काम सेवा करना नहीं, जनता का सेवा करना नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का जनता का सेवा करना, लेकिन उनका भावना सेवा करना नहीं है। केवल किस प्रकार से हम साम दंड भेद यह व्यवहार करके हम सत्ता में, यही उनका एकमात्र, अभी यहां ममता बनर्जी हार चुकी है और आप किस प्रकार से इंडी गठबंधन में माने घुसा जाए, इसको मजबूत किया जाए, क्योंकि मैं सदन में रहता हूं, इंडी गठबंधन का चरित्र सदन के अंदर में कुछ और होता है, सदन के बाहर में कुछ और होता है। इंडी गठबंधन माने संगठित नहीं था, नहीं है, भविष्य में भी नहीं रहेगा।
3: And we'll continue to track that meeting that's underway at the Constitution Club. For the moment, shifting focus now to the Congress in Rajasthan, where Ashok Gehlot seems to have reignited Rajasthan Congress's longest-running power struggle. The Ashok Gehlot versus Sachin Pilot feud in Rajasthan, which refuses to die down, now emerging from the fault lines every now and then to dominate the headlines. The former Rajasthan Chief Minister once again defending his camp's actions during the 2022 leadership crisis. I remember that was a time when Ashok Gehlot was asked to move to Delhi as party president and make way, as many said, for Sachin Pilot. Now Ashok Gehlot insisting that it was not a revolt against the high command and claiming that MLAs were only opposing Sachin Pilot's possible elevation as Chief Minister. Gehlot has also questioned the continued focus on Sachin Pilot, saying the Congress veteran should accept political realities. He also added that he never rejected the post of Congress president. And the BJP, meanwhile, sees fresh signs of a deepening rift, alleging Gehlot has been sidelined within the party and that the Rajasthan Congress remains divided between Gehlot and Pilot camps. Let's take a look at some of the reactions.
7: हमें सबको मिलकर लड़ना चाहिए, पायलट साहब हो चाहे मैं हूं चाहे कोई नेता है, अगर हमें ईमानदारी है कांग्रेस में रहने की, हम चाहते हैं कांग्रेस के लिए जान लगा दे, क्यों कांग्रेस ने हम सबको दिया है, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, मैंने उनको केंद्रीय मंत्री बनाने में मदद करी, उन्होंने अपनी जबान से कभी नहीं कहा, इस बात की मुझे शिकायत भी है, उनको मालूम है कि मैंने उनकी मदद करी, उनका फोन आया तो मैंने कहा मैंने आपके लिए बात कर ली है, आप मंत्री बन जाओगे, उन्होंने बात जबान से नहीं कही, दुख तो होता हम लोगों को भी भाई, अगर वो अपने दोस्तों भी कहते हैं हाँ भाई अशोक गहलोत ने मेरी मदद भी करी थी तो मेरा दिल भर जाता, क्यों नहीं कही उन्होंने, क्यों नहीं ये बात कही, जब मुझसे वो फ़ोन कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे मंत्री बनाने मदद करो और मैं मदद करके आ गया, तो क्या उनका धर्म नहीं था आगे कहने का कि भाई देखो मतलब अशोक गहलोत ने मेरी मदद भी की, ठीक है यार हमारी गलतफहमी हो गई आपस में, कुछ तो कहते वो ये बातें नहीं गई, उसके कारण से आज सब कुछ बातें आगे बढ़ रही है।
8: अशोक गहलोत जी का ये बयान, इसके कई मायने हैं, क्योंकि जिन ऑब्जर्वर्स को उन्होंने साजिशकर्ता बताया है और उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर्स सडनली आ गए, उनमें से एक थे माननीय खड़गे जी, और उनके बाद तो अध्यक्ष खड़गे जी बने जब उनका नाम आगे नहीं बढ़ पाया, तो इसका मतलब सीधे सीधे अब अशोक गहलोत जी खड़गे जी पर इशारे इशारों में ही हमला कर रहे हैं। और एक बात साफ है कि कांग्रेस मतलब टुकड़े टुकड़े कांग्रेस, कर्नाटका में भी डीके शिवकुमार बनाम सिद्धरमैया, पहले राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट, अब गहलोत जी बनाम खड़गे जी हो चुका है, दिल्ली में प्रियंका कांग्रेस वर्सेस राहुल कांग्रेस, तो हर जगह कांग्रेस पार्टी जो है वो टूटती फूटती नजर आ रही है। और ये हमला सीधा सीधा खड़गे जी पर हमला है, अब कांग्रेस ही बताए कि इसमें कितनी सच्चाई है।
9: देखिए वो अपनी पार्टी को ही कोस रहे थे इस बयान से ऐसा लगता है। अब मेरे हिसाब से उनको चिंतन मनन मंथन करना चाहिए कि वर्तमान युग परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स का है, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने नाम दिया है पॉजिटिव पॉलिटिक्स। जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, और जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करेंगे वो पीछे जाएंगे। अब ये तो मुझे लगता है अशोक गहलोत जी नेगेटिव पॉलिटिक्स की ओर बढ़ गए हैं।
10: गहलोत साहब सुर्खियों में रहने के लिए कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं, पता नहीं उनको क्या है। एक तो वो सचिन के खिलाफ में लगातार बयानबाजी करते हैं, कभी तो दोस्ती साबित करने की कोशिश करते हैं, साथ में रह के फोटो खिंचवाते हैं और मीडिया में ये कहते हैं कि देख लो हम एक हैं, हम साथ में खड़े हैं, देखो फिर मत कहना कि हम अलग अलग हैं। तो साथ रहने का वो सबूत भी देते हैं फोटो खिंचवा कर, मन से साथ नहीं है। अब ये वैसे तो यूँ समझो तो उनके अंदरूनी मामला है, ये आपस में अंदूरा कुश्ती है उनकी, कुश्ती लड़ते रहते हैं। ये सचिन जी को तय करना है कि किस दिशा में उनको रहना है।
11: जब जब भी माननीय सचिन पायलट साहब का नाम केंद्र में किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित पद पर नाम आता है और संभावना बनती है तो होटलों में बंद होने वाली कहानी पुनः दोहराते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उनके आरोपित करते हैं कि उन्होंने बीजेपी वालों के साथ मिलकर के पार्टी तोड़ने का प्रयास किया। मेरा उनसे नम्रता से निवेदन है, जिस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं अगर उसमें लेस मात्र भी सत्यता है तो उनके मुख्यमंत्री के काल के दौरान ये सब घटनाक्रम हुआ, और उनके स्वयं के अनुसार अगर जैसा कोई लेन देन का आरोप वो लगा रहे हैं वैसा लेन देन का अगर कोई घटनाक्रम हुआ है तो उन्होंने क्यों ना आज दिन तक मुकदमा दर्ज कराया।
12: अशोक गहलोत जी एक बड़े नेता है और अपनी बात कहने का अधिकार है, जो वो कह रहे हैं वो अतीत की बात है, पीछे क्या हुआ वो इतिहास है, और राजनीति में इतिहास पे चर्चा हो सकती है लेकिन उससे राजस्थान के विकास में कोई फायदा नहीं है। हम चाहते हैं और जनता राजस्थान की चाहती है, आने वाले समय में 2020 की बात नहीं सुनना चाहती है, वो 2047 की विकसित राजस्थान की बात सुनना चाहती है।
3: Some breaking news now coming in Trinamool Congress National General Secretary Abhishek Banerjee has sent a letter to the CID where he has sought more time to appear in the Vidhan Sauda signature forgery probe. In the letter, Banerjee has stated that he has moved the Calcutta High Court against the case and that it will be heard on the 10th of June. So Abhishek Banerjee, they're seeking more time and saying that he's moved the Calcutta High Court. That plea will take place on June 10. Now, this entire controversy involves the Trinamool Congress MLAs, Ritabratra Banerjee and Sandeepan Saha, who filed a formal complaint with the Assembly Speaker, where they alleged that the official resolution dated May 6th in the Trinamool Congress was completely fabricated, saying the party had adopted no formal resolution on that day, even claiming some of the signatures were forged and they were written in block letter. Now, and this case was then handed over to the CID for investigation. Abhishek Banerjee was summoned for questioning. However, he has now sought more time and he has said that he he sought more time to appear before the CID in this particular case, as he says.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Hello, these people.
6: Kolkata traffic.
7: The highest number of voters.
8: Tamil Nadu votes decisive.
9: अपना तो अफ्रीका माहौल है। उदयपुर पथराव किया गया है।
10: I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
11: TVK headquarters here.
12: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
13: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
14: Fast moving, but still relaxed. Informative, but still un.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
1: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
2: आज के की खावें झालमुड़ी ना माचर झोल।
0: How will you celebrate?
1: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
3: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आके और मसाला।
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
6: India's unshakable news habit, NDTV.com, is India's number one English news website.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा
6: सबका

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्गन मसाला।
4: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu,
5: so many attacks,
4: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
5: It's incredible.
4: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
5: Well-

सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है।

सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है।

सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप

इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है।

सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है।

0: बहुत अच्छा रही है, बहुत अच्छा।
1: सो दैट वाज इन फैक्ट Suvendu Adhikari, who in fact has just left from the residence of Bhupender Yadav.
2: ये सिर्फ शुकेंदुदा का बात नहीं है, मैं शुकेंदुदा से बात नहीं हुआ मेरा, मगर टीवी में शुकेंदुदा का जो बयान है, मैं ये बयान देखा हूँ, सुना हूँ। शुकेंदुदा का जो उन्होंने बोले हैं, मैं मेजॉरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ, और खास करके जहां तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था, शुकेंदुदा जो बोले है वो एकदम सही है। पार्लियामेंट क्विज करने का जगह नहीं है, क्विज मास्टरी करने का अलग सा जगह है, स्टूडियो है। पार्लियामेंट का फ्लोर, पार्लियामेंट का हाउस के अंदर, हाउस के बाहर भी, वहां ये हमें पहले भी बोल चुका हूं कि अभिषेक बंदोपाध्याय का जो संगठन लोग बोलते हैं, उस संगठन में बंगाली में आप जानते हैं संघ का मतलब क्या है, गठन का मतलब क्या है, उसमें संघ है मगर गठन नहीं है।
3: ना ज्यादा विरोधी दल एक साथ आएंगे तो उसको तो एक एडवांटेज होगा ही, शक्ति बढ़ेगा। तृणमूल कांग्रेस पर बहुत ज्यादा हमला हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, तो दूसरे लोग साथ रहेंगे तो तृणमूल का शक्ति मिलेगा। जैसे अभिषेक बैनर्जी पर जब व्यक्तिगत हमला हुआ तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कांग्रेस के ओर से उसको निंदा किया। यही मॉरल समर्थन, नैतिक समर्थन मिलता है। हाँ दिया,
4: क्या कहा है?
3: आने को बोला।
4: आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है?
3: नहीं जाएंगे।
5: See, as far as the implosion of the TMC is concerned, I as the official spokesperson of Bharatiya Janata Party would not be able to comment on what is happening within their own party, whether they have given in writing or not to the officials concerned in the parliament. I believe we'll have to wait for the officials to confirm that, but nonetheless, media being the fourth pillar of democracy, when media reports this along with the authentic bites, authentic statements of sitting leaders, and when we have resignation letters of sitting member of parliament of the TMC, of course, all is not well within TMC. And when all is not well within one's own family, जब अपने ही घर के लोग बीमार हो तो अपने घर के लोगों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, न कि बाहर जाके षड्यंत्र करने की साजिश।
6: Meanwhile, I-India Alliance held a crucial meeting to determine its future strategy with 23 political parties in attendance. Following the breakdown of its alliance with Congress, the DMK and the Aam Aadmi Party skipped the meet, while TMC, SP, NCP and PDP attended the meeting. Cracks appear to be widening among the allies. DMK left and the Aam Aadmi Party, they all have slammed Congress, although Shiv Sena UBT has backed Rahul Gandhi. In his opening remark, Congress Chief Mallikarjun Kharge hailed allies for defeating delimitation bill. He also urged allies to stand united against SIR and keep fighting BJP. Five outcomes with the bloc vowing to write a letter to CJI over Bengal voter theft and demand resignation of the education minister as well. The alliance also demanded an all-party meet on India's economic situation. The alliance also decided to meet every 2 months, with the next meeting scheduled for August in Hyderabad.
7: पांच पॉइंट पे आज सहमति जताई है। इट वॉज एग्रीड टू सेंड ए लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन SIR। सेकेंड पॉइंट, इट वॉज यूनानिमसली एग्रीड टू डिमांड द इमीडिएट रेसिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examination. Third point, the union government should immediately call an all-party meeting to discuss the

सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए तलाशी अभियान का हिस्सा थे। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है।

सिपाही जनरल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अनुमान गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है।

0: एंटरटेनमेंट क्विज करने का जगह नहीं है, क्विज मास्टर जो क्विज मास्टरी करने का अलग सा जगह है, स्टूडियो है। पार्लियामेंट का फ्लोर, पार्लियामेंट का हाउस के अंदर, हाउस के बाहर भी, वहां ये हम मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अभिषेक बंदोपाध्याय का जो संगठन लोग बोलते हैं, उस संगठन में बंगाली में आप जानते हैं संघ का मतलब क्या है, गठन का मतलब क्या है, उसमें संघ है मगर गठन नहीं है।
1: ना ज्यादा विरोधी दल एक साथ आएंगे तो उसको तो एक एडवांटेज होगा ही, शक्ति बढ़ेगा। तृणमूल कांग्रेस पर बहुत ज्यादा हमला हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, तो दूसरे लोग साथ रहेंगे तो तृणमूल का शक्ति मिलेगा। जैसे अभिषेक बैनर्जी पर जब व्यक्तिगत हमला हुआ तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कांग्रेस के ओर से उसको निंदा किया। यही मॉरल समर्थन, नैतिक समर्थन मिलता है। हाँ दिया,
2: क्या कहा है?
1: आने को बोला।
2: आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया
1: है? नहीं, नहीं आएंगे।
3: See, as far as the implosion of the TMC is concerned, I as the official spokesperson of Bharatiya Janata Party would not be able to comment on what is happening within their own party, whether they have given in writing or not to the officials concerned in the parliament. I believe we'll have to wait for the officials to confirm that, but nonetheless, media being the fourth pillar of democracy, when media reports this along with the authentic bites, authentic statements of sitting leaders, and when we have resignation letters of sitting member of parliament of the TMC, of course, all is not well within TMC. And when all is not well within one's own family, जब अपने ही घर के लोग बीमार हो तो अपने घर के लोगों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, न कि बाहर जाके षड्यंत्र करने की साजिश।
4: Meanwhile, IndiaAI Alliance held a crucial meeting to determine its future strategy with 23 political parties in attendance. Following the breakdown of its alliance with Congress, the DMK and the Aam Aadmi Party skipped the meet, while TMC, SP, NCP and PDP attended the meeting. Cracks appear to be widening among the allies. DMK left and the Aam Aadmi Party, they all have slammed Congress, although Shiv Sena UBT has backed Rahul Gandhi. In his opening remark, Congress Chief Mallikarjun Kharge hailed allies for defeating delimitation bill. He also urged allies to stand united against SIR and keep fighting BJP. Five outcomes with the bloc vowing to write a letter to CJI over Bengal voter theft and demand resignation of the education minister as well. The alliance also demanded an all-party meet on India's economic situation. The alliance also decided to meet every 2 months with the next meeting scheduled for August in Hyderabad.
5: पांच पॉइंट पे आज सहमति जताई है। इट वॉज एग्रीड टू सेंड ए लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन SIR। सेकेंड पॉइंट, इट वॉज यूनानिमसली एग्रीड टू डिमांड द इमीडिएट रेसिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examination. Third point, the union government should immediately call an all-party meeting to discuss the precarious current economic situation.
4: We're slipping into a very short break. I'm right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.

सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है।

सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है।

सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए तलाशी अभियान का हिस्सा। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है।

0: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
1: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
2: आज के की खाबेन झालमुड़ी ना माचर झोल।
0: How will you celebrate?
1: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
3: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
4: This is a declaration of our state that to the entire country that our

करते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और घायल होने के बावजूद अपने साथी को सुरक्षित किनारे तक धकेला, लेकिन तीव्र प्रवाह एवं गंभीर चोटों के कारण वो स्वयं को न बचा पाए। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया जाता है।

सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है।